0: All right, those are the live visuals coming on your screen from the BRICS Summit that is due to kick off very shortly in New Delhi. And as India is hosting the 18th BRICS Summit amid global uncertainties and a changing global order, Chinese President Xi Jinping is
1: for the BRICS Summit. The session is now officially called to order. Is it okay? Is it okay? Yeah. Your Highness, Excellencies, नमस्कार. भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है. रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं. इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है. इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया. लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. फ्रेंड्स, इस वर्ष की ब्रिक्स समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव है. हम ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ बना रहे हैं. मानव जीवन में 20 वर्ष की आयु मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नए चरण का आरंभ करती है. यह वह

अवस्था होती है जब सपनों के साथ जिम्मेदारियां जुड़ती हैं, सामर्थ्य को नई दिशा मिलती है। आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए। मैं ब्रिक्स कंटिन्यूटी एंड इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत ट्रॉयका के माध्यम से सभी इनिशिएटिव्स और आउटकम्स का फॉलोअप हो सकेगा। हम एक सिक्योर डिजिटल रिपोजिटरी बना सकते हैं। इसमें हर निर्णय के साथ नोडल पॉइंट, समय सीमा और इंप्लीमेंटेशन स्टेटस दर्ज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स को मजबूत करते हुए हमें ग्लोबल रिफॉर्म की दिशा भी तय करनी होगी। ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसके ऊपरी भाग में पावर और डिसीजन मेकिंग केंद्रित है और निचले भाग में वो देश हैं जो इन डिसीजन से प्रभावित तो होते हैं लेकिन उन्हें आकार नहीं दे पाते। ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें, जिसे हम अगली समिट तक एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप का रूप देने का प्रयास कर सकते हैं। इस रोडमैप को बनाने में हमें 3 मुख्य पहलुओं, रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रूल मेकिंग का ध्यान रखना होगा। पहला, रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।

0: जो देश ग्लोबल ग्रोथ को गति देते हैं उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिवनेस। वैश्विक संस्थानों में मानवता का विश्वास तभी बनेगा जब वे समस्याओं का प्रभावी समाधान करने में सक्षम होंगे। हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स के स्पीड, स्केल और लास्ट माइल इंपैक्ट पर ध्यान देना होगा। सी फेयरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं। इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रूल मेकिंग के संबंध में भविष्य के ग्लोबल ग्रोथ तय करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एआई, साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भविष्य के अवसरों के साथ भविष्य के नियम भी तय कर रहे हैं। हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। सुखद संयोग से आज यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन है। ग्लोबल साउथ को समर्पित इस दिन पर ऐसा निर्णय लिया जाना विशेष महत्व रखता है। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत में आयोजित इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। फ्रॉम वॉइस टू इंपैक्ट, फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टनरशिप, यही ब्रिक्स एट 20 का संकल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the BRICS summit that has now officially kicked off, with the Prime Minister calling for the session in order. PM Modi said India's priorities are resilience, innovation, cooperation and sustainability with a human-centric approach. He also thanked the leaders of the BRICS summit for their support. The BRICS bloc has now agreed on a joint declaration, which we will be expecting soon. And BRICS, what PM Modi said is BRICS is in its coming-of-age moment. BRICS now has its own global identity, which is based on consensus and not against anyone. These are the messages from the Prime Minister in the beginning of the BRICS summit. He added that there's need to work on an ambitious agenda for the next 20 years. He has also proposed 10 proposals for a BRICS reform roadmap, which can be presented at the next BRICS summit. He's talked about representativeness, responsiveness, rule of making, and has also called for a Seafarers Emergency Support Network for distress calls. Now, these were the messages from Prime Minister Modi in the opening of the BRICS summit, which is now in order. What he also said was India has organized this BRICS summit's objective should be clear. From voice to impact, privilege

0: निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिवनेस। वैश्विक संस्थानों में मानवता का विश्वास तभी बनेगा जब वे समस्याओं का प्रभावी समाधान करने में सक्षम होंगे। हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स के स्पीड, स्केल और लास्ट माइल इंपैक्ट पर ध्यान देना होगा। सी फेयरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं। इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रूल मेकिंग के संबंध में भविष्य के ग्लोबल रूल तय करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एआई, साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भविष्य के अवसरों के साथ भविष्य के नियम भी तय कर रहे हैं। हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। सुखद संयोग से आज यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन है। ग्लोबल साउथ को समर्पित इस दिन पर ऐसा निर्णय लिया जाना विशेष महत्व रखता है। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत में आयोजित इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। फ्रॉम वॉइस टू इंपैक्ट, फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टनरशिप, यही ब्रिक्स @20 का संकल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: So as Vladimir Putin and Xi Jinping arrive in New Delhi for the BRICS summit, they also have brought more than their delegations. Both leaders have brought their own heavily armored presidential cars. Now, Putin is traveling in Russia's Aurus Senat, while Xi Jinping is traveling in China's highly secretive Hongqi N701. For presidents and prime ministers, the official car is part of their security architecture. Using their own vehicles means traveling with some specially designed protection, communications and also security systems. Now, both Russia and China have developed their own presidential cars, turning the motorcade into a symbol of sovereignty, technology and also a projection of state power. Now, Putin has used the Aurus Senat since 2018 when it replaced the Mercedes that was previously used by the Russian presidency. Its exact protection remains classified, but the car is reported to feature heavy armor, bullet-resistant glass, blast protection, and even flat tires. It also reportedly has independent oxygen and filtration systems, fire protection, and secure communications. And there is an India connection.

0: Now, in his opening remarks at the BRICS summit, the Indian Prime Minister said that the Global South must also become a global decision maker. The Prime Minister said that Global South needs to shift from being a rule taker to a rule shaper. And he proposed to establish a seafarers emergency support network to protect and to support maritime workers in crisis. Take a listen.
1: Your Highness, Excellencies, Namaskar. भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, इस वर्ष की ब्रिक्स समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। मानव जीवन में 20 वर्ष की आयु मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नए चरण का आरंभ करती है। यह वह अवस्था होती है जब सपनों के साथ जिम्मेदारियां जुड़ती हैं, सामर्थ्य को नई दिशा मिलती है। आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता

0: हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए। मैं ब्रिक्स कम्युनिटी कंटिन्यूटी एंड इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत ट्रॉयका के माध्यम से सभी इनिशिएटिव्स और आउटकम्स का फॉलोअप हो सकेगा। हम एक सिक्योर डिजिटल रिपोजिटरी बना सकते हैं। इसमें हर निर्णय के साथ नोडल पॉइंट, समय सीमा और इंप्लीमेंटेशन स्टेटस दर्ज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स को मजबूत करते हुए हमें ग्लोबल रिफॉर्म की दिशाएं भी तय करनी होगी। ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसके ऊपरी भाग में पावर और डिसीजन मेकिंग केंद्रित है और निचले भाग में वो देश हैं जो इन डिसीजन से प्रभावित तो होते हैं लेकिन उन्हें आकार नहीं दे पाते। ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें, जिसे हम अगली समिट तक एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप का रूप देने का प्रयास कर सकते हैं। इस रोडमैप को बनाने में हमें 3 मुख्य पहलुओं, रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रूल मेकिंग का ध्यान रखना होगा। पहला, रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
1: All right, so that, of course, was the Indian Prime Minister's statement at the Delhi BRICS Summit. And also to put all of this in perspective, we're joined on this broadcast by my colleague Siddhant Sibal and Dharamjot Kaur, who've been tracking the developments for us. We also have with us Press TV's correspondent Adil Mir. He's also joining us on this broadcast. And joining us all the way from Claremont in California is Terrell U. Jones. He's a senior fellow at the Keck Center for International and Strategic Studies at Claremont McKenna College. Siddhant, let me in fact start off with you. The fact that these crucial bilaterals are being held and the Indian Prime Minister has also met with Xi Jinping, give us a sense of what is the big takeaway, because India and China have not had the best of relationships in the course of the last decade. Has this meeting gone on to iron out some of those differences?
2: Well, Mohammed, we're waiting for the readouts by the Indian and the Chinese side. This is a significant meeting that lasted for almost 1 hour. But before I can answer your question, I'd like to show you something. I'll show you the exact summit spot here.